0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। दिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl। आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त ब्रा

पीस की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पीस की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन एक बार फिर से बस पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। तो भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा भजन होगा अनूप जलोटा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, राम से बड़ा राम का नाम। सुंदर भजन जो काफी दिनों के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में

सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आसरा मीठे सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बसवरुगाम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले एक भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको हम ले चलते हैं पंडित जय शंकर जी की ओर और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट

रेडियो वेंस में इसकी जरिए सुंदर सा भजन हरिये हरण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी हरिओम शरण जी की आवाज में।

0: भगवान की जय।
1: हरिओम शरण जी की आवास में ये सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 8:00 प्रोग्राम में 13 मिनट वेटेड हो चुका है, 8:13। आज मंगलवार का दिन 29 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन एक बार फिर से कहा जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, देश विदेश में जितनी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है। और प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपको हम ले चलते हैं फिल्म का नाम देवदास, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण, हमेशा तुमको चाहा।

गाना पेश की गई फिल्म देवदास, कविता कृष्णमूर्ति एंड उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, ऐप किया है हमारा रेडियो SBS का ऐप पर, और उसी ऐप के जरिए तार भी किया है, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। आप सभी सुबह के वक्त तार किया है, कुछ बातें भी हुए हैं, खुद मोर्ख कहा है आप सभी सुनने वालों को, हेलो खुद मोर्ख, गुड मॉर्निंग, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। फिल्म देवदास के बाद ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म का नाम होगा, सॉन्ग बाय अनुराधा पोटवाल एंड बाबू सुप्रियो। ढाई अक्षर प्रेम के उसी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

एन बाबू सुप्रियो की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और अपना डक हॉरोस्कोप, अपना ज्योतिष शास्त्र आप जाकर देखिए। रोजाना इस पर नया डक हॉरोस्कोप होता है। आपका डक हॉरोस्कोप रेडियो SBS का वेबसाइट पर अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जरूर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट पर देखिए अपना डक हॉरोस्कोप, मौसमी समाचार और तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको इसी वेबसाइट पर दिया जा रहा है। इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। और मत भूलना इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है KKN श्रिया घोषाल द मूवी धोखा।

हरन और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 9 मिनटों ओवर 8:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। वजी

धुरंधर फिल्म का नाम गाना जो पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 12 मिनट बाकी है सुबह 9 बजने में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, इश्क हीट अप है।

रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, 29 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ, उसके बाद पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। 4:09 किशोर कुमार की आवाज में पहला गाना आज मंगलवार की खास सुबह की प्रोग्राम में।

0: से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम क्यों दिल।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन की जरिए टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

पद्मा श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में अब की बार सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुमन कल्याणपुर की आवाज में

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, पुरानी नखमे पुरानी गीत आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, पुरानी नखमे पुरानी गीत आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

0: लो जवा हो माशा अल्लाह तुम जवा हो माशा अल्लाह तुम
1: बदमाशरी मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

फैमिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आज की प्रोग्राम में गीता दत्त की ओर हम आपको ले चलते हैं और गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मंगेशकर की आवाज में गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम तकदीर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0 3 2 5 65 65 60।

अरे सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार किशोर द मैन विद द क्वीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में ये गाना

सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 10:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। फिल्म पैगाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

अर्शद भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना लता जी की आवाज में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है पकी।

परस मनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। तलत जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1974 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

की आवाज में फिखलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एंड लता जी की आवाज में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में।

वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चलते

ये आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों में थे कि उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये

As our Anuradha Potwal ke avans mein ye gana aaj ki program mein pesh ki gayi hai. सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

मैं और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। अब आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी। हाँ, उसी फिल्म का एक गाना किशोर एंड लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार और फनी की आवाज में।
1: प्यार कभी कम ना करना सनम हर

राम की आवाज में ये गाना बसपुरु गांव में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-6611। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए कंतूर का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। चले आज की प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन शहरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में, इतना भी ना चाहूं मुझे कि तुमसे दूर ना रह सकूं।

सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बरसात की ये प्रोग्राम भी पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में। कितना सुकून कितना आराम, साजन की बाहों में, फिल्म का नाम साजन की बाहों में, उसी फिल्म का गाना आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जरूर प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना कुमार सानू जी की आवाज में। ये गीत

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में फिल्म सावन की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है, कुणाल गांजावाला की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

जान की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम सावरिया, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए प्रोग्राम में एक पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है साथी, लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना रेडियो SBS की सरिये।

मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीठे की फिल्म साथी का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है और

नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गए तेरे नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है radio.sbs.com। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, कुमार सानू और साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपकी बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हित नक में रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना, सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन की जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुन वालो हरे कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60-60। अभिजीत औरल का प्रोग्राम है।

अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना पेश की गई मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

तब ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल 10।

सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का नाम है, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम तीसरी

आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पीस की गई है। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिस फिल्म का नाम है राजकुमार। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा रेडियो SBS का आज की इस खास प्रोग्राम में। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 030-2266-6611। शहर उत्रेख हॉलैंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मरहूम मोहम्मद रफी।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले किशोर एन आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक काफी प्यार भरी गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस दीवानी है, महल फिल्म का नाम, गाना जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड आशा के बाद मुकेश और लता जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये खास गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम मेरे हम सफर, मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन।

बीच के गए घना कबूल किसी राह पे किसी मोड़ पे। फिल्म का नाम मेरे हम सफर। रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब की बार एक काफी खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मरहूम मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

सफाई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर के।

मुलाकात मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे ये तमाम पुरानी नगमे आप सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

आप हमारी जान बन गए समुद्र मिथुन विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीजिए क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर्ट नार एट प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja or Muskuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दोस्त सलमा आगा है बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietong Kelleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Ginny Wits en die komt Roeberoe.

मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

निगम अलका याच ने एक और कोरस की आवाज़ में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज़ में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।

मुझे रंग दे, इसको समुद्र आशा भोसले एंक्वा मैं फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम थो समुद्र जगजीत सिंह। कल 14वीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राप्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कॉम दे सिकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

0: शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है पिया द रीमिक्स।
1: परदेसिया ये सच है पिया।
2: Yo, listen out there.

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।